अम्ये दृष्ट शुभ कर हर अग पाप सकल मल काम क्रोध अर लोभ मोह वस कर सब बल सदा सुख मन वस दुख संसार है खुवे गुर नव निध दरियाओ जन्म हम काल खतोवे सुख टल गुर सेविया अहनिस सहज सुभाई

गोपते नसरत बेदरंगिया अजनार प्रभु बिसुंदियाकार पुरजी साहिब दरबार में तेरे दरबार सतकल निरंकार लक्ष्मी कड़ी तेरे दरबार सरब देव ते कड़े नमस्कार धोरा नानक गुरु गोविंद सिंह जी पुरण अपार जग मग जोत बिराज श्री हरि अपार।

0: हर जन्म मरण विहीन दस जन चरण प्रवीण दस चक्र लंग रूप अपार अंचल तेज उदार जुद दे उदार फिर जुरूप दुरंत सब जगत जुल महरंत दस तिलक दूर तमान दस चार चार नितान दस चार चार नितान लंग रूप अपार सब जगत स्वरूप दार कल्स काल कर्म विहीन सब कराल कम प्रवीण सब कराल कम प्रवीण अनखंड अतुल प्रताप सब प्रचंड ब्रह्मांड
1: सब करम ने ओ परमान बिन देख नाम आधार

Book जल के परैया को गंगे ऋषि कहा जल के तानिए भजनिए सच को रस जग मानिए सूरज से पैया धारे कौन लिए बड़ सोई रे जन के मासे पैया को कभी के पहन जानिए पैया को कभी के नारायण ने कछ पाछ दिन दुआ कहा सब को न सब को लुआ के हाथ से प्रहोद नाम को बिनाथ को जन को पाल सब दिन जन रे की डर नाम के मन दिन लहि अति के नाम के मान लहि अत है माधव भवर ओटे को कन्हैया नाम का सब को बधाई को मधुया नाम यत को मानव फनिंद देव दानव न पावे भेद भेद योग तेब नेत नेत का कहत है नाचत फिरत मोर बांदर करत घोर दामनी अनेक भाव करि करत है चंद्रमा शीतल न सूर स्थित पत तेज इंद्र सोना राजा भव भूम को भरत है शिव से तपस्यात ब्रह्मा से न वेदचारी सनत कुमार से तपस्या न अनत है ज्ञान के विहीन काल फांस के अधीन सदा जुगन की चौकरी फिराई फिरत है एक शिव भय एक गए एक फिर भय रामचंद्र कृष्ण के अवतार भी अनेक है ब्रह्मार विषण के वेद पुराण कित सिमृत समूह है मोन दीम तार कितने अश्विनी कुमार कितने अंशावतार कितने काल बस भय है फिर पिगंबर कितने गन न परत एत भूमि ही ते हो के फिर भूमि ही मिलय है जोगी जति ब्रह्मचारी बड़े बड़े छत्रधारी छत्र ही की छाया कई को सुलो चलत है बड़े बड़े राजन के दावत फिरत देश बड़े बड़े राजन के द्रप को दलत है मान से महीब और दिलीप कैसे छत्रधारी बड़ो अभिमान भोज दंड को करत है दारा से दिल्ली सरद्रुजोधन से मानधारी भोग भोग भूम अंत भूम में मिलत है सिज दे करे अनेक धूप जी कपट भेष पोसती अनेक दाने वावत है शीस को कह भयो मल जो पे काटत अनेक दंड सो तो न डंडो दया से टांग अथ तीस को कह भयो रोगी जो पे डर रहे उर्ध मुख मन ते न मुंड ने हो रायो आद ईस को कामना दीन सदा दामना प्रभी ने एक भावना बीन कस पावे जगदीस को शीस पट कत जागे कान में खजूर दस मूंड छट कत मित्र पुत्र हूं के शोक सौ आग को चरैया फल फूल को बछैया सदा बन को ब्रह्मैया और दूसरो न बोक सौ कहा भयो भेट जो कसत शीस वृक्षन सो माटी को बछैया बोल पूछ लीजे जो कसौ कामना दीन काम क्रोध में प्रभी ने एक भावना विहीन कैसे बेटे पर लोक सौ नाचोई करत मोर दादर करत शोर सदा गन घोर गन करोई करत है एक पाए ठंड सदा बन में रहत ब्रिज फूक फूक पाम भूम श्रावक धरत है पाहन अनेक जुग एक ठौर बास करे कांग और चील देश देश बिचरत है ज्ञान के विहीन महादान में नहु जलीन भावना यकीन दीन कह सके तरत है जैसे एक सोंगी कहूँ जोगी आप राखी बन कब हूँ संन्यास भेष बन के दिखावई कहूँ पौनहारी कहूँ बैठ लाए तारी कहूँ लोभ के कुमारी सो अनेक गुण गावई कहूँ ब्रह्मचारी कहूँ हाथ पे लगावे बारी कहूँ दंडधारी हो के लोगन भ्रमावई कामना दीन पर नाचत है नाचन सो ज्ञान के विहीन कैसे ब्रह्म लोक पावई पंच बार गीदर पुकारे पर शीत काल कुंचर ओगदहा अनेक दा पुकार ही कह भयो जप कल वत्र लियो कांस बीच चीर चीर चोर डाकु ठारन सो मारही
कहा भयो फांसी डार बूढ़े जड़ गंग धार डार डार फांस ठग मार मार डार ही डूबे नरक धार मूड ज्ञान के बिना विचार भावना विहीन कैस ज्ञान को विचार ही ताप के सहित जो पाइये अतापनाथ तापना अनेक तन घायल सहत है जाप के किए तो पायत अजाप देव भूत ना सदीव तुही उचरत है नभ के उड़त जो नारायण पाइयत अनल आकाश पंजी डोल वो करत है आग में जरत गत राण की बरत कर।

सोई रस कर ही मोई दूसरो न भेद कोई भूल ब्रह्म मान बो एक ही किसे सब एक गुर देव एक एक ही स्वरूप सब एक ज्योत जान बो देहु राम सीत सोई बुझाओ निवाज ओई मान सब एक पय अनेक को भ्रमाओ है देवता देव जज गंधर्व तुरक हिंदू न्यारे न्यारे देशन के

जैसे एक आग ते कनु का कोट आग उठे न्यारे न्यारे हुई के फिर आग में बिलाएंगे। जैसे एक दूर ते अनेक दूर पूरत है दूर के कनु का फिर दूर ही समाहेंगे। जैसे एक नद ते तरंग कोट उपजत है पान के तरंग सब पान ही कहेंगे। तैसे विश्व रूप ते अभूत भूत प्रकट हुए ताही ते उपज सब ताही में समाहेंगे। केते कछ मछ केते उनको करत बच केते अच वच हो सपच उड़ जाएंगे। केते नब बीज अच पच को करेंगे।

ताहि देव बज सब ताहि मैं समाहेंगे। कूकत फिरत कित रोवत मरत कित जल में डुबत कित आग में जरत है कित गंग वास कित मदीना मकानी वास कित उदास के ब्रह्माई फिरत है। करवत सहत कित भूम में गड़त कित सुवा पे चढ़त कित दुख को भरत है। ज्ञान में उड़त कित जल में रहत कित ज्ञान के बिहीन जग जा रही मरत है। सोदहार देवता विरोध हारे दानो बड़े बोध हारे बोधक प्रबोध हारे जाप सी घास हारे चंदन लगाए हारे चौचार भूज हारे पाहन चढ़ाए हारे लापसी गाह हारे गोरन मनाए हरे मडी मंडली पहारे भीतन लगाए हारे छापसी गाय हारे गंधर्व बजाए हरे किन्नर सब पाच।

उदयत बानी कहूं जा चकंद्र किन्नर कहानी कहूं राजसी सात की तापसी हो कहूं जोग विद्या धरे तापसी हो कहूं रोग रहता कहूं जोग जोग तंग कहूं भूम की भुगत मैं ब्रह्म।

कहां धर्म को परम है कहां धर्म को नाश है कहां चित्त की चेष्टा कहां चित्त का दोहरा कहां ज्ञान ने असंभव कहां ज्ञान के ज्ञान को रोकी सो की गवन कहां

दामनी प्रकाशे उन्नरनासे
सरदार विपरखन दुर्जन धरखन तुलम अरखन धरम दुजे धूमराज विदुन संसूर्ण तुन संसुम्बन पादन सुम्भ मथे जय जय उसी मै का दुर्मर्दन आद नील अगाध कथे त्व प्रसाद पादड़ी छंद तुम कहो देव सर्वंग विचार जिमकी हो आप करते पसार जद बभूतन भय अनंत तव कहो जथा मत त्रैण तंत करता करीम कातर कृपाल अद्वय भूतन भय दयाल दाता दुरंत दुख दुख रहत जेह नेत नेत सब वेद कहत कईयो चनीज की नो बनाओ सब वार पार जाको प्रभाव सब जीव जंत जानंत जाहे मन मूड क्यों न सेवंत ताहे कई मूड पत्र पूजा करंत कई सिद्ध साध सूरत सिवंत कई पुलट सूरत सिजदा कराए प्रभ एक रूप द्वै के लखाए अंशिज तेज अनभय प्रकाश दाता दुरंत अद्वै नाथ सब रोग सोग तेरह द्रूप अनभय काल अक्षय स्वरूप करुणा निधान कावल कृपाल दुख दुख हरत दाता दयाल अंजन विहीन अनभंजनाथ जल थल प्रभाव सर्वत्र साथ जय जात पात नहीं भेद भरम जय रंग रूप नहीं एक धर्म जय शत्रु मित्र तू एक सार अच्छा स्वरूप अवचल पार जानी न जाय जय रूप रेख कहे बास दास कहे कौन भे कहे नाम दास है कवन जात जय शत्रु मित्र नहीं पुत्र भ्रात करुणा निधान कारण स्वरूप जय चक्र जय नहीं रंग रूप जय खेत भेद नहीं कर्म का

दयाल दया कर श्री पद सुंदर श्री पद मापते है। काम न क्रोध न लोभ न मोह न रोग न शोक न भोग न भय है। देह भीन स्नेह सबोधन नेह विरक्त के अच्छे है। जान को देत जमीन को

एक चलावत गावत उतन एक न लागन पावे। राखत है मनोकर दय कर बाप समूह न बेट न पावे। और की बात कहा कह तू सौ सौ बेट ही के पट बीच बचावे। जाच भुजंग सो दानव देव भेव तुम्हें सब ही कर द्यावे। भूम आकाश पताल रसातल जाच भुजंग सब सिर न्यावे। पाए सके नहीं पार प्रभु को ने तही ने तह वेद बतावे। खोज थके सब ही खुजिया सुरहार परे हर हाथ न आवे। नारद से चतुरानंद से रुम नारिक से सब हु मिल गायो। वेद कते न वेद लख्यो सब हार परे हर हाथ न आयो। पाए सके नि पार उमा पद सिद्ध सनात सनंदन ध्यायो। ध्यान धरो ते को मन मै जे को अमित ओज सब जग छायो। वेद पुराण कतेव कुरान अभेद निर्वाण सब बचहारे। भेद न पाए सके अन भेद को खेदत है अनछेद पुकारे। राग न रूप न रेख न रंग न साग न शोक न संग तिहारे। आद नात अगाद अभेगत वैग जपे उतने ही कुल तारे। तीरथ कोट किए स्नान दिए बहुदान महाव्रत धारे। देश विरह कर बेस्त बोधन के धरे न मिले हर प्यारे। आसन कोट करे अष्टांग धरे बहु न्याज करे मुख कारे। दीन दयाल काल भजे।

अत्र के चलैया छित छत्र के धरैया छत्र धार्यो के छलैया महासत्रन के साल है दान के दिवैया महमान के बढ़ैया अवसान के दिवैया है कटैया जम जाल है जोध के जितैया विरुद्ध के मिटैया महाबुद्ध के दिवैया महामान हूं के मान है ज्ञान हूं के ज्ञाता महाबुद्धता के दाता देव काल हूं के काल महाकाल हूं के काल है पूर भी न पार पावे हिंगुला हिमाल जावे गुर कर तेज गुण गावे तेरे नाम है जोगी जोग साधे पौन साधना की तेग बांधे अरब के अरबी आराध तेरे नाम है फरा के फिरंगी माने कंधारी गुरे सी जाने पश्चिम के पश्चिमी पछाने निज काम है मरहटा मंगेल तेरी मन सो तपस्या करे दृढ़ वैत लंगी पहचाने धर्म धाम है बंग के बंगाले फिर हंग के फिरंगा वाली दिल्ली के तलवाली तेरी आके में चलत है रोह के रोहले मांग देश के मंगेले वीर बंग से बुदेले बाप पुंज को मलत है गोखा गुन गिर मचीन के शीस न्याव ते बते आए दुख देह के दलत है जिन्हें तोहे ध्याय तिन्हें पूर्ण प्रताप।

पतित पावन भगत वत्सल करुणा निधान जुगहो जुग अटल चवर शतर तख्त दे मालिका हलत पलत के रख्यक वालिये दो जहान शब्दा अवतार शब्द गुरु धन धन साहेब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जीओ महाराज जिना सतगुरु सचे पातशाह जी महाराजियां दी पावन पवित्र हजूरी अंदर साहेबां दे पावन अस्थान तख्त सचखंड श्री हजूर श्री अबचल नगर साहब जी विखे जुड़ बैठी गुरु प्यारी गुरु सवारी साध संगत जीओ तख्त साहब जी दी नित मर्यादा नितनेम अनुसार संध्या दे दीवान सज रहे हन। हुण सज रहे पावन

अपने कमर कसे दे विचों कटार बार कढ़ ली माता जी दे छाती दे उते ला दिती। कहण लगा बुढ़िए एवें बगबात करी जांदी आ, इहनू पार कर दवांगा मार दवांगा। यह वेख करके सिख जड़े उत्थे बड़े घबरा गए डर गए कि बेईमान बंदा जिन्हें शस्त्र चक ही लिया ओहदा की भरोसा इन्हें चला भी देना। तुरंत जा करके विच विचकार आए माता जी का बचा करना कीता। माता जी एक पासे हो गए बहुत दीन मना हो करके माता जी विराग करते हैं। सतगुरु महाराज जी के वचन बार बार याद आते। माता जी कहिंदे कि सतगुरु जीओ मैं तुहाडा वचन क्यों नहीं मनना कीता। पातशाह जी ने बार बार कहा कि सुंदरीए आ बच्चा जिहड़ा है चलो गुरु घर दे विच बहुत सारे मैं पहला भी बेनती की प्यारियो बहुत सारे बच्चे उन्हां दा लालन पालन गुरु घर दे विच हुंदा। महाराज ने कहा चल उस रूप दे विच लालन पालन करो लेकिन ये ना बोलो कि जी इहनू मैं अपना पुत्र बनाउणा अपना नाम देना। ते माता जी नहीं मन्ने कहन लगे नहीं जी ये तो मेरा है। ते नाम भी देखो माता जी ने अजीत रखना कीता उन्हां दी याद दे विच। माता जी नू थोड़ी पता पातशाह जी ने कहा कि संसार दी कोई ताकत अजीत सिंह दी बराबरी नहीं कर सकती है। मैं बेनती कीती सी प्यारे और नाम वड्डे रखाउण दे नाल बंदा वड्डा नहीं बन जांदा। बंदे दे किरदार वड्डे होने चाहिए।

जी गुरु गुरु निवास अंत जामी सच्चे पातशाह जी महाराज धन धन श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज आप जी दे पावन पवित्र स्थान तक सचखंड दरबार दी यहां जराबर दे होए कीर्तन दे सत्ताज संतालो बिनत माया हाजिर होए जिस खजाने विच माया हाजिर कीती सो सो खजाने भरपूर करना नाम दान गुर सिखी वाला जीवन बसना दे अरोगता बख्शनी आसा मनसा संपन्न करनी यात्रा सफली करनी।

कहै चौपाई सम सत्रह सैस भणी जय अर्ध सैस भुन तीन कहे जय भादो सुधी अष्टमी रवारा तीर सुद द्रव ग्रंथ सुधारा।

आप करो हमरे सब काज, तुम हो सब राजन के राजा, आपे आप गरीब नवाजा। दास जान कर कृपा करो, मोय हार परा मैं आन द्वार तोहे, अपना जान करो प्रतपारा, तुम साहेब मैं किंकर।

नेत्री सतगुर पेखना सरवणी सुनना गुर नाव सतगुर से तीरतिया दरगह पाई ठाव कहो नानक किरपा करे जिसनू एह वथ दे जग मह।

लाज असि गोबिंद दास वार्त होरा राज करेगा खालसा आकी रहे न कोए खुआर होए सब लेंगे बच्चे सुन जो होए दोहरा उठ के सबा मलिज की कर कूड़ा पसार डंका बाजे हृदय कान है कलंक उतार चातर चक्रवर्ती चातर चक्र भुगते सुया भौस बंग सरदास सुजते दुकाल प्रणाशी दयाल स्वरूप सदांग संगे आप हंगम विभूते देख गुफ्तन अफतस नान गुरु गोबिंद सिंह जी श्री काल प्रति सहाय दरबार नमे तेरो दरबारा सच खंड विश्व निरंकारा लक्ष्मी करी मृत दरबारा।

विस्माद रूप विस्माद रंग विस्माद नागे फिरह जंत विस्माद पौन विस्माद पानी विस्माद अग्नि खेडे विडान विस्माद धरती विस्माद खान।

भै विचिंद फिरै सिर भार, भै विच राजा धर्म द्वार, भै विच सूरज भै विच चंद, कहो करोड़ी चलत न अंत। भै विच सिद्ध बुद्ध सुरनाथ, भै विच आडाने आकाश, भै विच जोत महाबल सूर, भै विच आवह जावह पूर। सगलिया पाव लिखिया सिर लेख, नानक निर्भव निरंकार, सच एक महान।

सतगुरु देवदाता को नहीं सब सुनियो लोक सुभाया सतगुरु मिलि पाया जन चो आप गवाया जिन सचो सज बुझाया जिन सचो

0: नानक जन पाए कैस मान ले सबना जिन करते करना किया चिंता भे करनीता सो कृता चिंता करे जिने पाया जग तिस जो हारी स्वस्थ तिस तिस दी बाणी पग नानक सच्चे नाम बिन क्या टिका क्या तग महला पहला
1: लख लिखिया।

कुड़कुड़ैने लगा बिसरिया करता किस नाल की चै दोस्ती सब जग चलन हार कुड़ मिठा कुड़।